0: और अगर कहीं पे जाना है आपको, यात्रा करनी है, तो फिर भी बार बार देख सकते हैं आप। 10 गाड़ियां 13 अक्टूबर तक कैंट पे नहीं रुकेंगी। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे चल रहे निर्माण कार्य की वजह से 10 ऐसी गाड़ियां हैं, तो ये गाड़ियां आपको पहले चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी हैं, जहां पे जाकर के ये सारी की सारी चीज़ें हम मालूमात कर सकते हैं।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्यार तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्यार करना हम सब का एक, जिसको कहते हैं ना कि हम सब उसके साथ पैदा होते हैं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो समय समय पे सीखते रहते हैं। ये है म्यूज़िकल दिल्लगी और ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ पीएम सेतु योजना के बारे में। ये एक केंद्रीय कौशल विकास पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि IIT को, ITI को आधुनिक बनाना है। इस योजना की पूरी जानकारी नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पे उपलब्ध है, इसको देखिए, समझिए और उसके बाद ये आपके काम की है कि नहीं ये आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो ये गाना है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है जिद्दी और जो ख्याल है, जो शब्द हैं वो आपके और हमारे हैं।

अरे हम बोलेंगे ना, आपको पता है कि चीनी का सौतेला भाई कौन है? चाय। एनीवे, बहुत ज़्यादा हमें मालूम है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी जो मिठास की बात है उसको रोक नहीं पाते, और यही चीज़ हमें ये मैसेज देती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी तो लगती हैं लेकिन फिर भी हमें अपने आप को रोकना पड़ता है। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। ये है म्यूज़िकल दिल्ली। आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो और यहाँ पे होनी चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको करनी चाहिए और आपको सुनने में अच्छा लगता है। FM Gold AIR Delhi@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी। और इसके अलावा आप हमारे साथ यूं ही हमेशा जुड़े रह सकते हैं, जुड़ के और अपनी बात बता करके, हो सकता है कि उसमें और भी आपको अच्छा लगे। फिलहाल तो बजने वाले हैं 10, समय है ये समाचारों का, और मैं आपसे मिलूंगी बिल्कुल यहीं पे, यही है पता हमारा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं की हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। आज सदन की कार्रवाई 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधान

0: मंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा है कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री जैन ने कहा कि आकाशवाणी ने एक विश्वसनीय सार्वजनिक प्रसारक के रूप में पहचान बनाई है। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा उधम सिंह को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: आज शिलोंग में 135वें डूरंड कप के ग्रुप ई के मुकाबलों की शुरुआत होगी। इस ग्रुप में मेघालय के 3 क्लब शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब और लैंगसनिंग फुटबॉल क्लब खेल रहे हैं। इनके साथ ही मुंबई फुटबॉल क्लब भी ग्रुप ई का हिस्सा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा आज दोपहर होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी आज शिलोंग के पोलो ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेंगी। अनुमिता दास, आकाशवाणी न्यूज, शिलांग।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." He said that the National Education Policy 2020 has been the biggest game changer over the last decade. Moving the bill in the House, Dr. Singh reiterated the Modi government's resolve of zero tolerance towards malpractices and paper leaks of public examinations.
3: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
2: Initiating the discussion.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए सहमति बनने की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए, 10 अंदर फंसे हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
1: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश जोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर

0: राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: ये नई सरकार फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के निकट समन्वय में काम करेगी। उन्होंने कहा कि समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसराइल किसी भी शांति समझौते के लिए गजा पट्टी से हथियार और सेना हटाने सहित हमास की पूरी तरह की मांग करता रहा है। इसराइली सेना गजा में अपनी सैनिक गतिविधियां लगातार बढ़ाती रही है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी के 70% इलाके पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 25 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए हैं और 10 अब भी अंदर फंसे हुए हैं। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण बताया जा रहा है। कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है। पाकिस्तान के कोयला खदानों में हवा आने जाने का समुचित मार्ग न होने तथा निगरानी और सुरक्षा प्रणाली के अभाव के कारण अक्सर घातक हादसे होते रहते हैं। स्पेन के क्षेत्रीय नेता हुआन जेसुस विवास ने कहा है कि पिछले सप्ताह सैकड़ों प्रवासी मोरक्को से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव के स्वेटा में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे स्थानीय संसाधनों पर काफी असर पड़ा है। श्री विवास ने स्पेन सरकार से हस्तक्षेप करने तथा मानवीय और सुरक्षा आपातकाल की चेतावनी देने का आग्रह किया। स्पेन ने कहा है कि वे मोरक्को के साथ मिलकर अतिक्रमण रोकने और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने के लिए काम कर रहा है। यातना और क्रूर अमानवीय व्यवहार या सजा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिरासत में उचित चिकित्सा देखभाल न मिलने की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी पसंद के अनुसार चिकित्सा जांच और उपचार की अनुमति देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एडवर्ड्स ने बताया कि इमरान खान को 33 महीनों से एक छोटी और खिड़की रहित कोठरी में एकांत कारावास में रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। वर्ष 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान को कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा है। इस बीच पार्टी की संसदीय समिति ने इमरान खान की रिहाई और अन्य मांगों को लेकर 5 अगस्त से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
3: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेलवा प्रभु थिरुरामन ने भी फाइनल में जगह बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कांस्य पदक विजेता एथलीट सीमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि युवा महिलाओं को खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। उधर अजरबैजान में बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय

0: जवान निकिता शहरावत ने रजत पदक जीता जबकि कामना बाबुल ने और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इस बीच वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का यही सही समय है।
1: The reality of life is that everything has a beginning.
2: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
3: भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान विकास सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
4: शहीद उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। उन्होंने 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन के केक्सटन हॉल में गोली मार दी थी। उन्हें माइकल ओ डायर की हत्या का दोषी ठहराते हुए वर्ष 1940 में आज ही के दिन फांसी दे दी गई थी। पंजाब के संगरूर जिले में उनके पैतृक स्थान नाम में उनकी स्मृति में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
3: गृहमंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। गृहमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन धैर्य, संकल्प और देशभक्ति का अप्रतिम उदाहरण बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए सहमति बनने की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए, 10 अंदर फंसे हुए हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

10:30 हो चुके हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पे. ये है दिल का मेल बॉक्स. आपका मेल बॉक्स है मेरे सामने और गानों की लिस्ट है हमारे पास. सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से, कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, संजय ममता और बेबी किट्टू. जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी है. पद्मा स्टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से. बताऊंगी इस गाने के बाद.

दिल और जान की टसल, सिर्फ और सिर्फ दिल का मेल बॉक्स में आपकी चॉइसेस, आपके नाम हमारे पास। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कोई भी गीत हमें अच्छा लगता है। जो आपकी चॉइस हो, आपकी चॉइस हमारी चॉइस, सेम टू सेम। थैंक यू वेरी मच। हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, इसके साथ ही संजय ढींगिया हैं, नमन ढींगिया हैं, अपार ढींगिया हैं, परवेज आलम नमस्कार कहते हैं कि देखिए, मैं ग्राम बलमी सिरसिया, जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार से सुन रहा हूँ आपको, और आप मेरी फरमाइश कभी पूरी नहीं करती हैं। ये तो फरमाइशी प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ आप और हम हैं इसमें और गीत हैं आपके, ऐसे भला कैसे हो सकता है। तो आपका गीत है हमारे पास, मारहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल, अनम यशफ, रसीद वारसी, किदवेनगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान, और आपकी पसंद ये रही। लेकिन उससे पहले सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से।

देव शंकर तामुरिया है, अजय देव तामुरिया है, तुषार देव है, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और पोता है उनका अलकवी। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन, सहनाज, नवेद, सुहेल, अनम, रशीद वारसी। किदवई नगर सिद्धुपुरा से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवलकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरकर। यह है दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। एफएम गोल्ड airdelhi@gmail.com पे आप हमें करते हैं अपनी रिक्वेस्ट, भेजते हैं अपने नाम और अपनी जगह के साथ। इसके अलावा हम हर बार आपसे कहते हैं कि कोई गाना आपको क्यों अच्छा लगता है, उसके पीछे कोई ना कोई तो बात होगी, वो भी बताइए जरा क्या है कि ये गाना आपको हमेशा अच्छा लगता है। क्योंकि कई ऐसे लोगों की चॉइसेस मैं देखती हूँ, जब पढ़ती हूँ तो हर बार एक ही गाना हमें भेजते हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो होगा ही होगा।

0: रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
6: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दिल का मेल बॉक्स, और इसमें मेल आया है महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ हरियाणा से। सुदर्शन मुखी है, अनीता है, सिमरन है शांति नगर सोनीपत से, और विवेक वरदान सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना नाम लिखा है और कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली रेडियो लिस्नर क्लब से हैं नवाब अहमद भारती और बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, सिराज मिथुन, संजय ढींगिया। आपको, आप सबको बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अग्रसेन यादव हैं, शकुंतला यादव हैं, गरिमा है नई दिल्ली से, और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश हैं, अतर सिंह, राजकुमारी, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल, अद्विक, समयपुर दिल्ली से। ये सब लोग दिल का मेल बॉक्स में हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, इसलिए कि आप हमें जो मेल करते हैं, अपनी चॉइस बताते हैं, उससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि बस हम जुड़े हुए हैं। तो आप यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

0: बजने वाले हैं वैसे तो 11, लेकिन खूबसूरत नजारे की तस्वीर लेकर के हाजिर होंगे हम जल्दी ही। बस बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे

0: अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
2: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोबी लालछन जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालछन जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Anuja Kumar. The Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." He said that the National Education Policy 2020 has been the biggest game changer over the last decade. Moving the bill in the House, Dr. Singh reiterated the Modi government's resolve of zero tolerance towards malpractices and paper leaks of public examinations.
1: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children, and hence

0: www.nerawazod.com पर।
1: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
0: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद।
1: बताओ और कमाओ, तब तक के लिए आनंद
0: और अदिति को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, हम तो आपको साथ लेके चलेंगे। ये है तस्वीर। तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे 100.1 MHz। और तस्वीर आज है जिस चीज की, उसका नाम है मारिडो मिल्ली। अब मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हैं या नहीं, लेकिन घूमने का सबसे अच्छा एक बहुत ही इको टूरिज्म स्पॉट है ये, बहुत ही सुंदर। आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बीच में बसा ये स्थान अपने घने जंगलों, झरनों और वहाँ पे जो आदिवासी कल्चर है उसके लिए जाना जाता है। आप यहाँ पे कैंपिंग और हरियाली बड़े आराम से दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। जंगल के बीच में कैंपिंग करने और घाट की सड़कों पर गाड़ी चलाने का जो मज़ा है वो अलग है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जल तरंग

अग्नि अमृत धारा जैसे बहुत ही फेमस झरने मिल जाएंगे जो हम सबको बहुत अच्छे लगेंगे। तो फिर क्या आप तैयार हैं तस्वीर देखने के लिए मारेडो मिल्ली की?

देखिए तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे, और आज है तस्वीर मारिडो मिल्ली की। पूर्वी गोदावरी जिले के मारिडो मिल्ली वन समृद्ध जैव से भरा पड़ा है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है सदाबहार वनों और लहरदार भूभाग से भरा हुआ है और पूर्वी घाट का हिस्सा है। मारिडो मिल्ली सामुदायिक संरक्षण और पर्यावरण पर्यटन क्षेत्र भद्राचलम सड़क पर मारिडो मिल्ली गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र में घने जंगल हैं, लहरदार चट्टाने हैं, बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं हैं। अब बताइए इतना अच्छा नज़ारा और भला कहाँ मिल सकता है। मेन चीज़ ये है कि हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो फिर उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं, कैसे लेते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और घूमना एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में हमें एनर्जाइज करता है, एनर्जी से भर देता है और बहुत सारे सपने हम उसमें बुनने लगते हैं। तो एक सपना हमारे साथ तस्वीर में मारिडो मिल्ली है। ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी प्यारी सी जगह आपके लिए।

मारदुमिल्ली आंध्र प्रदेश का एक शांत और सुंदर गांव है जो अपने झरनों के लिए भी जाना जाता है। ट्रैकिंग भी आप यहां पे कर सकते हैं। वलामुरु से अमृतधारा 8 किलोमीटर, झरने तक 2 किलोमीटर की गहरी यात्रा है। क्रॉस कंट्री ट्रैक भी है, टाइगर कैंप से विजरुल्लू तक 8 किलोमीटर लगभग। और अगर थोड़ा और चैलेंजिंग ट्रैक करना चाहते हैं तो वलामुरु से नल्लूर तक 10 किलोमीटर। इसके अलावा जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, तो फिर इसकी भी कहानी है। जंगल स्टार शिविर स्थल वलामुरु नदी के किनारे पे है जिसमें तीन ओर से नदी बहती है और यहाँ से बाली सुग्रीव कोंडा दिखाई देता है जिसे रामायण काल में बाली सुग्रीव का युद्ध क्षेत्र माना जाता है। युद्ध क्षेत्र की उल्लेखनीयता बहुत ही अच्छी है, ये सब आप जानते हैं। रामलीला देखते हैं जिसमें घास के मैदान और चारों तरफ पहाड़ियों के घने जंगल हैं और उसके बाद एक कहानी जो हम सबके ख्यालों में आती है।

मार्डो मिली हरियाली की चादर ओढ़े हुए एक प्यारा सा गांव जो मुस्कुराता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसा लगता है कि बादलों से मिलना चाहते हैं और उस पे ठंडी ठंडी हवा के झोंके जो कोई ना कोई मैसेज हम सबको दे के जाते हैं। फिर आप पाएंगे कि जंगल में हर शाम एक ऐसी खामोशी होती है जिसका है कोई एक नाम, और ये नाम हम सब अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं। जो भी यहाँ आए घूमने, याद साथ ले जाए बहुत सारी। मार्डो मिले की सुंदरता सबके दिल में हमेशा हमेशा यूं ही बसी रहती है। और अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जाने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से फरवरी, सर्दियों के महीने में, और मौसम बहुत सुहाना होता है तब। लेकिन मानसून में भी अगर आप जाएं तो फिर यहाँ की जो हरियाली है उसकी जो बात है वो बहुत निराली है, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और तस्वीर है ये मार्डो मिली जो है आंध्र प्रदेश में।

0: फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी पे ये है तस्वीर मर्दमुल्ली की, जो आंध्र प्रदेश का एक सुंदर सा गांव है, जो अपने झरनों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स के लिए, आदिवासी कल्चर के लिए फेमस है। और यहाँ की जो पूरी की पूरी नेचर है, उसका जो सुंदर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो बहुत नायाब है। तो मर्दमुल्ली में आपको 2-3 दिन बहुत है। इसके आसपास आपको लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर मिलेगा, रामप्पा मर्दमुल्ली और मन्याम व्यू पॉइंट है, पामुलरु जलप्रपात है, जल तरंगिनी वाटरफॉल है, और इसके बाद और भी कुछ अगर बचेगा तो वो है आपका एक्सपीरियंस। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं नई जगह पे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है, और उसी अनुभव को लेकर के हम वापस लौटते हैं। तो तस्वीर है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे मर्दमुल्ली की, जो आंध्र प्रदेश में है। और पता है, यहीं पे पुष्पा दराई जो फिल्म है ना, उसकी शूटिंग हुई थी।

हर जगह कुछ न कुछ ऐसी बात होती है जिसका हमें ख्याल रखना होता है, तो यहाँ पे क्या करें और क्या ना करें, तो उसमें सबसे पहले आप कूड़ेदान का प्रयोग कीजिए। धूम्रपान और शराब पीना सख्त सख्त मना है, और जो पॉलिथीन जो भी है इस तरह की चीज़ें, अपना कूड़ा खुद ही उसको मैनेज कीजिए। कोई ऐसी चीज़ अपने साथ ना ले जाए जो जल्दी जल जाती हो। और कैसे पहुंचना है, राजमुंद्री भद्राचलम राजमार्ग पर मारदुमिल्ली बस स्टैंड से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ही अच्छे से वेल कनेक्टेड है। मारदुमिल्ली में घूमने लायक आपको सारी जगह मैंने आपको बता दी, बहुत ही प्यारी है। हाँ, यहाँ पे आप बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो फिर तैयार हो जाइए। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में राजमुंद्री से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर मारदुमिल्ली, जो कि हर नेचर लवर को अपने पास बुलाती है और यही कहती है कि कभी तो हमारे पास भी आइए और देखिए तो सही यहाँ पे क्या है जिसको आप मिस कर रहे हैं। ये तस्वीर मारदुमिल्ली की कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर, और हाँ, घूम के आइएगा।

हर शहर में अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लेते हुए, हाथ में सपने, दिल में एक करेज है कि बस घूमना है और जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस कलेक्ट करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वो कलेक्शन है ना हमारी, जो एक्सपीरियंस का, वही हमारे काम आता है और हमें बहुत बहुत रिच बनाता है। तो फिर घूमिए, बहुत मज़े में घूमिए और दीजिए इजाज़त इंदु पांडे को घूमने के लिए। मैं तो चली, हैप्पी जर्नी। अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक

0: शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्रे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालछन जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालछन जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Rajya Sabha has been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. The Lok Sabha has also been adjourned till 12 noon on the same issue. When the Rajya Sabha assembled at 11 a.m., several union ministers laid the papers on the table of the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the 0 hour. Several members raised issues of urgent importance. However, the opposition members began protest with sloganeering, pressing for their demands. As the pandemonium continued, the Chairman adjourned the House for the day till Monday.
2: The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, 3rd August 2026.
1: Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh said this issue touches every citizen of India and has a stake with every citizen of this country.
3: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
1: Initiating the discussion, Leader of Opposition Mallikarjun Kharge said the proposed amendments will not be effective to curb malpractices.

0: 당근.
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेनू, तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। आज शाम जब बरसा सावन, भीगा अपना तन मन सारा, भ्रांति लिए बैठी हूं अब तक, सावन था या प्यार तुम्हारा, कान्हा ने राधा से पूछा तुम मुझको सच सच बतलाना, भली लगी कब तुम्हें बांसुरी और अधर तक उसका आना, भीगे हम भी भीगे तुम भी, शायद था सौभाग्य हमारा, शायद था सौभाग्य।

भाग्य हमारा। जी हाँ, सौभाग्य, उत्साह, उमंग और भक्ति से सराबोर सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो हमारे जीवन में नई ताजगी भर देता है। क्योंकि सावन का मतलब है हरियाली, सावन का मतलब है श्रृंगार, सावन है कजरी, सावन है तीज, सावन है मेहंदी और सावन है प्रिय के मिलन की आस में पींगे बढ़ाती युवती, यानी सावन है झूला।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बहू बेगम और आवाज़ थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम की, तो हमारे खिलाड़ी रोज़ कोई ना कोई खुशखबरी हमें दे रहे हैं। जी हाँ, लवप्रीत सिंह ने हमें दिलाया है एक और सिल्वर मेडल। और

सीमा ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के मेडल्स में और बढ़ोतरी की है और इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या हो गई है 17, जिसमें 3 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच गए हैं और उनसे भी मेडल की उम्मीद है और मुक्केबाजी में भी मेडल की उम्मीद है। तो इन सभी खिलाड़ियों को हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब समय है जिसका आपको इंतजार रहता है, समय है सवाल का। तो आज का सवाल बड़ा जायकेदार है, यानी आपको बताना है कि आपको कौन सा व्यंजन पसंद है, यानी आप ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं, किसके हाथ का बना आपको ज्यादा पसंद है। तो लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पर, हमें है आपके मेल्स का इंतजार।

जी, आया सावन झूम के, ये झूमता हुआ गीत आपने सुना। फिल्म थी आया सावन झूम के और आवाज़ लता मंगेशकर और रफ़ी की। और इसी के साथ जो सवाल हमने पूछा था आपसे, तो मेल आना शुरू हो गया है। और इसमें सबसे पहला मेल जो कि नवीन भाटिया जी लिखते हैं, और भाई मानना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले मेल आपका आ जाता है। तो आपने लिखा है कि राजमा चावल आपको पसंद है और अपने पापा के हाथों का तैयार किया हुआ। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि राजमा चावल आपको पसंद है, वो भी अपने पापा के हाथ का तैयार हुआ किया हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी कभी अपने हाथों से बना के अपने पापा को भी खिलाया होगा। लेकिन हाँ, पापा के जितना अच्छा बनाने की शायद आपकी कोशिश रही होगी, उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पापा का प्यार उसमें भरा होता है ना, वो भी तो बात है, इसलिए टेस्ट और बढ़ जाता है। और राजमा चावल की जहां तक बात करें, तो देखिए ना, राजमा चावल दिल्ली के आसपास पंजाब और कश्मीर की डिश मानी जाती है, तो बहुत पसंद किया जाता है, बहुत लोकप्रिय भोजन है। और दिल्ली की अगर बात किया जाए, तो दिल्ली में तो और भी, जैसे कि छोले भटूरे हैं, चांदनी चौक के पराठे, पराठे वाली गली ही है कि चांदनी चौक में, तो और चाट है, और राम लड्डू, राम लड्डू जो है ना, यहाँ के जो मूंग की दाल के बनते हैं वो पकौड़े, और उसके और मूली और हरी चटनी के साथ जो इसे दिया जाता है, ये इसका लाजवाब है। मतलब इसका स्वाद दिल्ली में जो आता है ना, वो और भी जगहों पर लोग बनाते हैं, लेकिन उतना अच्छा शायद नहीं होता होगा। और फिर इसके बाद एक और मेल आई है हमारे पास, ये है अग्रसेन यादव जी की। तो अग्रसेन यादव जी भी कह रहे हैं कि हमें भी सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन दाल चावल इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, सादा खाना पसंद करते हैं। भाई तो पसंद की बात है, ये अच्छी बात है कि सादा खाना तो बिल्कुल सब खाने, सब तरह के पसंद आने चाहिए और लोगों को पसंद करना चाहिए। और देखिए आप लोग, खाने पीने की आज तो बात चल रही है, खाना पीना तो भाई सभी लोगों को बहुत पसंद होता है, तो इस बारे में तो आप हमें जल्दी जल्दी लिखिए, और सारी मेल हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, मेल लिखिए और हमें बताइए अपनी पसंद के व्यंजन के बारे में, और किसके हाथ का बना पसंद है आपको। और आप अपने हाथ का बना हुआ भी हमें बता सकते हैं कि आप वो जो चीज़ आपको पसंद है खाने में, क्या आप उतनी ही अच्छी बना भी पाते हैं कि नहीं। तो जो भी है डिटेल इस बारे में लिखिए, भेजिए। तब तक मैं मेल्स का इंतज़ार कर रही हूँ आपके। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, जैसे दिन विशेष की हम बात करते हैं, तो आज है मुंशी प्रेमचंद की जयंती, जिनकी रचनाएं अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। उनकी कहानी

और उपन्यास शोषण और गरीबी जैसी कठोर वास्तविकता को उजागर करते हैं, लेकिन अंततः मानवीय मूल्यों और नैतिक जीत की ओर ले जाते हैं। यानी वे केवल अंधेरे और कड़वे सच को नहीं दिखाते, बल्कि उसका समाधान आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही उनकी रचनाओं की विशेषता भी है। इसीलिए उनके साहित्य को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, पूस की रात, पंच परमेश्वर, सदगति जैसी उनकी रचनाओं में भारतीय किसान और गांव की आत्मा बसती है। उन्होंने जमींदारों, महाजनों और ब्रिटिश नीतियों द्वारा किसानों के शोषण और उनकी बेबसी का इतना सजीव चित्रण किया है कि पाठक भावुकता के संसार में डूबते उतराते हैं। तत्कालीन समाज में स्त्री के संघर्ष और उसके हालात पर भी उन्होंने बहुत ही संवेदनशील होकर लिखा है। निर्मला, सेवा सदन, नैराश्य लीला, स्त्री और पुरुष, ठाकुर का कुआं जैसी रचनाओं के माध्यम से स्त्री की दुर्दशा, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, विधवा की समस्या और पर्दा प्रथा जैसी इन कुरीतियों पर उन्होंने घोर उसका विरोध किया है। और उनके लेखन का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करना था। तो उनकी जयंती पर आज हम सब उनको सादर नमन करते हैं और सुनते हैं उन्हीं के उपन्यास गोदान पर बनी फिल्म गोदान से रफी की आवाज में ये गीत।

कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और आज मैं हूं आपके साथ रेनू। आज है शुक्रवार, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज हमारी बातचीत के केंद्र में होते हैं हमारे बुजुर्ग, यानी हम बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर। घर में अगर दादा दादी माता पिता पोते पोतियां एक साथ रहते हैं तो उस घर में पीढ़ियों के साथ साथ परंपरा निवास करती है और उस घर में बसती है संस्कृति। ये सारी चीज़ें स्वतः भावी पीढ़ी को हस्तांतरित भी हो जाती हैं, लेकिन एक साथ रहने में एक दूसरे के विचारों को समझने में कभी कभी कुछ मतभेद भी उभरते हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि हर पीढ़ी की सामाजिक परिस्थितियाँ सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं और हर दौर के साथ सोच का बदलना स्वाभाविक है। लेकिन इस सोच के बीच में सामंजस्य बिठाना ही पीढ़ियों के अंतराल को कम करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपस में खुला संवाद हो, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना समझना। इसलिए बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात को कहना चाहिए और दूसरों की सुनना भी चाहिए। घर में सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही एक दूसरे के साथ समय बिताना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अलग से कोई समय निकालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो भी काम आप कर रहे हैं ना उसको साथ में मिलकर कीजिए। फिर देखिए समय अलग से निकालना भी नहीं पड़ेगा और एक दूसरे के साथ समय भी बिता पाएंगे और एक दूसरे को समझ सकते हैं और उसका जो है अवसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप अपने दादा दादी नाना नानी को कई नई तकनीक सिखा सकते हैं बच्चे, तो वहीं बड़ों के अनुभव से उन्हें नई सीख मिल सकती है। विचारों का आदान प्रदान, सम्मान और सीख पीढ़ियों के अंतराल को काफ़ी हद तक कम कर देती है। अपनी सोच को व्यापक रखकर आपस में एक दूसरे को सम्मान देकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। इसी से अपने घर का वातावरण खुशनुमा बना सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कि बुजुर्गों का साथ सौभाग्य वालों को ही मिलता है। और इसी के साथ मुझे एक मेल प्राप्त हुई है, ये लिख रहे हैं महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ से। तो आप लिख रहे हैं कि मेरी बेटी का बनाया हुआ चिली पटेटो बहुत पसंद आता है मुझे, और जब भी वो आती है तो मेरे लिए चिली पटेटो ज़रूर बनाती है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, आजकल के बच्चों को वैसे ये जो फास्ट फूड की चीज़ें हैं या चिली पटेटो है, चाउमीन है, मोमोज है, ये सब बनाना भी बहुत पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है। थोड़ा कुछ ज़्यादा भी कभी कभी खा लेते हैं और साथ में हम लोगों की डांट भी खाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और देखिए ना, इस तरह से आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो यही तो मेल मिलाप और यही चीज़ें हैं जो घर के माहौल को खुशनुमा बनाती हैं। और इन्होंने एक ये है, गौरी शंकर का मेल भी हमें प्राप्त हुआ है नागलोई से। ये कह रहे हैं कि हमारी माता जी बनाती थी खीर और हलवा, और जो कि कढ़ी चावल भी इनके घर में बनता है, तो जो कि मैं खुशी से खाता हूँ। बिल्कुल सही बात है, देसी खाने की बात ही कुछ और है, कढ़ी चावल और हलवा और खीर तो भाई क्या कहने हैं। और घर में उनके माँ का हाथ का तो वही जो मैंने कहा ना कि जब उसमें प्यार शामिल होता है ना तो स्वाद तो खाना अपने आप हो ही जाता है। तो अभी बातें और होंगी, चलिए तब तक सुनते हैं एक गीत।

ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी सावन की घटा और आवाज़ थी आशा भोसले की। और हार तब होती है जब मान लिया जाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लिया जाए। जी हाँ, कुछ इसी तरह के जोश और जुनून की मिसाल पेश की है तमिलनाडु की रहने वाली नवनीत थम्मा ने, जिनकी उम्र है 116 साल। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी अटूट आस्था और जज्बे से वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति मंदिर की 3,550 सीढ़ियाँ पैदल चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। उस समय उनका परिवार उनके साथ था, यानी लाठी के सहारे के साथ साथ उन्हें भावनात्मक सहारा देने वाले उनके परिजन उनके साथ थे। बस फिर क्या था, गोविंदा गोविंदा बोलते हुए नवनीत थम्मा ने अपना ये सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उनके इस जज्बे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सलाम किया और तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम ने भी परिवार सहित उन्हें विशेष वीआईपी दर्शन की सुविधा दी, तो शॉल उड़ा के उन्हें सम्मानित भी किया। तो नवनीत थम्मा को और उनके इस जज्बे को हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर सलाम करते हैं।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी मेरा कसूर क्या है, आवाज़ सुमन कल्याणपुर की। और इसी के साथ मुझे एक मेल प्राप्त हुई है, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये भी हमारे रेगुलर जो है नियमित रूप से श्रोता है हमारे जो लिखते हैं, और ये लिख रहे हैं कि हमें तो अपने घर के पूरी छोले और चावल राजमा पसंद है और मैडम के हाथ का बना हुआ। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको घर का खाना पसंद है और घर के लोगों का बनाया हुआ पसंद है। तो लेकिन बहुत अच्छी बात है, घर का पसंद करते हैं। और मैं एक बात और खाने पीने के बारे में कहना चाहूँगी कि जब आप कभी घूमने जाते हैं ना कहीं पर, तो घूमने के लिए वो जो मनोरम दृश्य आप देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, ऐतिहासिक इमारत देखते हैं, वो तो है ही, प्लस वहाँ का जायका जरूर लीजिएगा, वो लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक याद रह जाती है आपकी। और हर क्षेत्र का जायका, हर क्षेत्र के व्यंजन अलग होते हैं। जैसे कुछ कुछ व्यंजन, जैसे आप कहिए कि बिहार की बात जैसे ही हम करते हैं तो लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा, दाल पीटा, गुंगनी चूड़ा, ठेकुआ, ठेकुआ की याद आती है। ठेकुआ जो कि छठ के त्यौहार में विशेष रूप से बनाया जाता है, और छठ में बिना ठेकुआ के अगर कहा जाए कि छठ की त्यौहार जो है वो संपन्न नहीं होता। और वहाँ की एक और मिठाई है खाजा और अनरसा, जो कि वहाँ पे इसके अनरसा जो है विशेषकर सावन के महीने में बनाया और खाया जाता है। तो ये भी, और सावन के महीने से देखिए जुड़ी हुई एक और मिठाई मुझे याद आई, घेवर। जब सावन का नाम आता है ना, तो घेवर का नाम भी साथ में जुड़ा हुआ होता है। घेवर की मिठाई बड़ी लाजवाब होती है, और इसका संबंध राजस्थान से है, और इस बहुत ही रिच मिठाई होती है इसका, क्योंकि वो उसमें देसी घी और मलाई, बहुत ज़्यादा केसर, ये सब पड़ता है। और क्योंकि रजवाड़ों से संबंध रहा है ना इस मिठाई का, तो उसका प्रभाव भी अभी भी देखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, और लखनऊ की बात करें अगर, तो मुगलई खाने का स्पष्ट प्रभाव वहाँ देखा जाता है, जैसे कि कबाब, बिरयानी, शीरमाल। शीरमाल एक मीठी रोटी होती है, बहुत ही लाजवाब, बहुत मुलायम, अच्छी रोटी होती है। और इसके अलावा लखनऊ में कुल्फी, मक्खन मलाई, मक्खन मलाई को पता है वहाँ ना जो स्थानीय भाषा में, क्योंकि वो बहुत मुंह में घुल जाने वाली मुलायम सी मिठाई क्या मक्खन मलाई होती है, तो उसको लवे माशू कहा जाता है, वहाँ के लोकल लोग जो है उसको बोलते हैं। इसी के साथ अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें ना, तो वहाँ पे एक मटर का निमोना स्पेशल, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, खाया भी होगा कुछ लोगों ने, जाड़े के दिनों में मटर का निमोना बहुत पसंद किया जाता है, मटर को पीस के बनता है, चावल की तहरी जो उसी क्षेत्र की लगभग कही जाती है। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष की बहुत अलग अलग डिश होती हैं, अगर आप कहीं घूमने कहीं भी जाएं किसी भी राज्य में, तो वहाँ की डिश भी खाना पीना बिल्कुल उसको करना चाहिए। और खाने पीने की बात चली है तो अब बात कर ली जाए चाय की, चाय यानी सुबह। जी हाँ, अधिकांश लोगों की सुबह जो है वो चाय के साथ होती है, लेकिन सुबह की चाय हमारी सेहत पर डालती है विपरीत असर। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, गैस की समस्या, पाचन तंत्र कमजोर होना और जैसी समस्याएं मतलब मिल जाती हैं, होती हैं। और ये आदत जो है ना सुबह की चाय पीने की, ये शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को भी प्रभावित करती है। चाय शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर सुबह की चाय हो स्वाद के साथ, सेहत के साथ, तो क्या कहने। जी हाँ, इसी तरह के हर्बल चाय तैयार की है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव की महिलाओं ने। इस गांव की बबीता रानी और अन्य महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाई है विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी, जिसकी तारीफ मन की बात जो कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित होता है उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ की। और इसमें पड़ता है लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची, सौंफ का उपयोग किया जाता है, और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसीलिए इस चाय को पसंद करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। और दिल्ली के इंटरनेशनल

फूड फेस्टिवल में और प्रयागराज के कुंभ में भी इसको खूब सराहना मिली थी, और सराहना के साथ साथ इस प्रयास से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिल रही है। तो अगर इस चाय का लुत्फ आप भी उठाना चाहते हैं तो इस हर्बल चाय को ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के या सीधे ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से खरीद सकते हैं।

तेरे घर के सामने, अभी इस फिल्म से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। और देखिए खाने पीने की बात चल रही है तो मैं अपना अनुभव भी आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अभी गुजरात जाना हुआ था मेरा, गुजरात की यात्रा पर, तो गुजरात में अनोखे जो उनके स्वाद हैं वो तो सब आप लोग ने भी लिया होगा और पूरे देश में, वैसे हर जगह का अब तो कोई क्षेत्र की विशेष की वो बाध्यता नहीं है, हर क्षेत्र का खाना हर जगह पहुंच ही जाता है। तो वहाँ के जो मेन जो वो डिश है वो है ढोकला, थेपला, फाफड़ा, खांडवी, और ये सब जो है ना अधिकतर बेसन के प्रयोग से बनती है और मूँगफली का प्रयोग वहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि मूँगफली की पैदावार भी वहाँ ज़्यादा होती है। इसी तरह से महाराष्ट्र के खाने की अगर बात करते हैं तो तुरंत जो है वो बड़ा पाव, भेलपूरी, पूरन पोली, थाली पीठ, ये सब जो है एकदम से याद आ जाता है। और बड़ा पाव तो वहां की सबसे लोकप्रिय जो है वो डिश है। और मोदक, मोदक को कैसे भूला जा सकता है, अभी भगवान गणेश का जो गणेश चतुर्थी है वो आने ही वाली है और बिना मोदक के तो भगवान गणेश को मतलब वही पसंद है, बिना उसके तो वो पूजा होती नहीं है। और अब खाने पीने की बात चल रही है तो फायदेमंद खाने पीने के बारे में हम समय समय पर अपने कार्यक्रम में आप लोगों को बताते ही रहते हैं। तो आज बात जो है करते हैं कमल ककड़ी की। और देखिए क्योंकि मौसम जब बदलता है तो खाने पीने का अंदाज बदलता है, क्योंकि हर मौसम में प्रकृति हमें कुछ ना कुछ नई सौगात देती है और जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। और इसी के साथ आजकल जो मिलने वाली कमल ककड़ी है यानी लोटस रूट, उसके बारे में बताएं तो उसको आपने कई रूप में आपने भी खाया होगा, जैसे कि सब्जी।

बनाकर, कोफ्ते बनाकर, चिप्स, फ्राइज, हनी चिली, लोटस स्टेम या किसी भी तरह से खाया जा सकता है इसे। और ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये बहुत फायदेमंद होती है। इससे पाचन में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, क्योंकि कमल ककड़ी में बहुत सारा फाइबर होता है। इससे पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या भी नहीं रहती। इसमें विटामिन सी भी होता है, जिससे कि शरीर की बीमारियों और संक्रमण से बचाने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है, जो दिल को स्वस्थ रखता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें आयरन और कॉपर होते हैं, जो शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त की कोशिकाओं को बढ़ाते हैं। तो जब इतने सारे फायदे हैं, तो आजकल मिलने वाली ये कमल ककड़ी क्यों ना बनाई और खाई जाए।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी दिल तेरा दीवाना और आवाज़ लता मंगेशकर और रफ़ी की। और देखिए आप लोग, हम सवाल कुछ ना कुछ अपने कार्यक्रम में पूछते हैं और आप उत्साह पूर्वक इसका जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से अपने सवाल और हमारे सवालों का जवाब देते रहिएगा। और जो है ये, क्योंकि इससे ना हम दो तरफा बातचीत कर पाते हैं, हम अपनी तो कहते ही हैं, आपकी बातें भी सुन पाते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। और मुझे यानी रेनू को इसी के साथ दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे किसी कार्यक्रम के माध्यम से। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: घर आंगन, आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार

ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:11 और ठीक 2 सेकंड कलाकार बेमिसाल लेकर देविका हाजिर है।

0: जी हाँ, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। वाकई ऐसा लगता है ये जादू भरी आवाज़ आज भी हमारे आस पास है। दुर्भाग्यवश ये उस जादू भरी आवाज़ का अंतिम गीत था जिसे हम मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल में बात इसी आवाज़ की, जिसने संगीत को एक नई पहचान दी। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास, ऐसा जादू और ऐसी भावनाएं थीं कि हर गीत सीधे दिल को छू जाता। आज भी उनके गाए गीत पीढ़ियों को जोड़ते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि सच्चा संगीत कभी पुराना नहीं होता। रवि साहब की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को हुई, और कहाँ और साथ उन्हें गाने का शौक कब, कैसे और क्यों हुआ, आइए उन्हीं से सुनते हैं।
1: अच्छा तो रफी साहब, आपके जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछने थे, कभी तो सिलसिला शुरू करें।
2: जी सर।
1: अच्छा तो सबसे पहले मैं आपके बचपन की जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहूंगा, मसलन आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ कहाँ रहे वगैरह वगैरह।
2: मैं कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में पैदा हुआ, उसके बाद हम लोग लाहौर चले गए, लाहौर से 1942 में मैं बम्बई आ गया।
1: आपके बचपन की तालीम घर पर ही हुई या कहीं बाहर भी गया?
2: मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई, क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी।
1: वो तो वो नहीं था, आपको इतना बड़ा कलाकार जो बनना था, मोहम्मद रफी बनना था। खैर, बाद में आपके संगीत की तबीयत किसकी निगरानी में हुई? आपके वालदैन ने तो मुखालफत जरूर की होगी।
2: अजी ये तो मत पूछिए, ये तो वो इतने खिलाफ थे, कभी कभी तो ऐसा था कि हमको मारते भी थे, इतने खिलाफ थे गाने के। पर फिर आखिर जी तो संगीत की हुई और मेरी हुई।
1: आपके उस्ताद कौन थे?
2: मेरे उस्ताद उस्ताद बरकत अली खान थे, और जिनसे मैंने क्लासिकल गाने की तालीम हासिल की, और दूसरे उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब।
1: अच्छा
2: जी हाँ। बाकी आज सब पूछे लोग कि ये जिनसे हमारा रोज रास्ता पड़ता है, जिनसे हम गाना जो हमारे इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे उस्ताद ही हैं, इनसे हमको काफी सीखने को मिलता है।
0: जी हाँ, ये थी रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़। और आपको बताएं कि बम्बई यानी मुंबई फिल्म नगरी में काम करते हुए रफ़ी साहब ने प्रायः सभी संगीतकारों के साथ काम किया। शुरू के दौर में आपने संगीतकार नौशाद जी के साथ अपनी संगीत यात्रा शुरू की, और अंत तक उनके साथ ये सफ़र जारी रहा। नौशाद साहब के साथ रफ़ी साहब ने कोरस सिंगर के रूप में गाने की शुरुआत की, और फिर बाद में सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे जैसे गीत भी नौशाद जी के लिए गाए। लीजिए सुनिए शकील बदायूनी साहब का लिखा उन्नीस सौ 1949 की फिल्म दुलारी का ये गीत।

जी हाँ, रफ़ी साहब के गाए सारे ही गीत ऐसे हैं कि जब आप उन्हें सुनते हैं तो आप साथ में गुनगुनाने लगते हैं, है ना। जैसे कि रफ़ी साहब ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि वो पंजाब के थे और उनके फिल्मी सफ़र का पहला गीत भी पंजाबी था। फिल्म थी गुल बलोच, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर जी के निर्देशन में सन 1944 में गाया था। लेकिन हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूसरी पंजाबी फिल्म गीत बहारा दे का एक प्रसिद्ध गीत का एक अंश। संगीत निर्देशक रहे एस मोहिंदर, लिखा इस गीत को नक्श लायलपुरी ने और बोल है जी करदा इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर मार दिया।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: 1:25 और ठीक 3 सेकंड कलाकार बेमिसाल और आज बात मोहम्मद रफ़ी साहब की। संगीतकार नौशाद साहब के बाद सचिन देव बर्मन ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का खूब इस्तेमाल किया। सचिन दा ने असल में देवानंद और गुरुदत्त जी के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ को अपनाया। लीजिए 1965 की फिल्म गाइड का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनिए। शैलेंद्र साहब के लिखे इस गीत का छायांकन हुआ देवानंद और वहीदा रहमान जी पर।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूँ।

श्रोताओं, जैसा कि रफी साहब ने खुद बताया कि वो सब संगीतकारों को अपना गुरु तुल्य मानते थे, इसलिए उन्होंने सभी से अपना 100% लिया भी और अपना 100% दिया भी, चाहे वो नौशाद हो, सचिन देव बर्मन हो या फिर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन जी की जोड़ी के लिए रफी साहब ने असंख्य ऐसे गीत गाए हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। उनमें से एक गीत चुनना मानो ऐसा है जैसे किसी बगिया में खिले अनगिनत गुलाबों में से एक गुलाब चुनना। फिर भी हम जो गुलाब चुन के लाए हैं वो है कवि नीरज का लिखा 1969 की फिल्म कन्यादान का एक गीत। और सच मानिए श्रोताओं, ये गीत मुझे भी बेहद पसंद है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। जी हाँ, कलाकार बेमिसाल देविका है आपके साथ और बात मोहम्मद रफी साहब की। रफी साहब एकमात्र वो कलाकार जो पेपी सॉन्ग से लेकर देशभक्ति के गीत, दुख भरे गीतों से लेकर प्यार भरे गीत, कव्वाली से लेकर गजल तक और भजन से लेकर शास्त्रीय संगीत तक के गाने एक सी सहजता से गा जाते थे और इतने अच्छे गा जाते थे कि आज भी वो रूह तक पहुंचते हैं। यहां तक कि यूडलिंग, जिसके लिए केवल किशोर कुमार जाने जाते थे, वो भी रफी साहब से दूर नहीं थी। प्रमाण है 1962 की फिल्म रिपोर्टर राजू का ये गीत जो अब आप सुनेंगे। और सच बताएं तो हमने रफ़ी साहब को इस छोटे से समय में और बहुत ही थोड़े से समय में समेटने की कोशिश की है, लेकिन हम कितने कामयाब हुए हैं ये श्रोतागण ही बता सकते हैं।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: कलाकार बेमिसाल से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। संगीतकार रवि जी के साथ भी रफी साहब के संबंध कई फिल्मों से रहे। 1959 की फिल्म नीलकमल के गीत बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए रफी साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और 14वीं का चांद के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। लेकिन हम आपको सुनवा रहे हैं रवि जी के संगीत निर्देशन में रफी साहब का गाया एक अद्वितीय गीत, जिसे हमने लिया 1962 की फिल्म बम्बई का चोर से। गीतकार रहे राजेंद्र किशन।

मिरीमिफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज शक संवाद 1947 श्रावण माह की द्वितीय तिथि तदनुसार सन 2026 जुलाई महीने की दिनांक 31 और दिन है शुक्रवार। श्रोताओ अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंत स्वर्गरे, श्री लमसरिंग और मिस शिखा डिका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री अशुद बर्मन, मोनपा में उद्घोषक श्री लोपसंग नरबू तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कारमो। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे केंद्र से आज की तमाम कार्यक्रम आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मिट्टी न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।
1: पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में। फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
2: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा।

0: जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़े कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
4: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस।

0: लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
1: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र जेपीएससी पेपर लीक और जेएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि जेपीएससी पेपर लीक मामला और जेएसएससी जो भर्ती घोटाला उसकी सीबीआई जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, सीबीआई जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
1: आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालछनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरल, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
3: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटून और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं जबकि 13 जिलों में करीब 8 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर

0: फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खोरदा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे मिट्टी न्यूज तथा दोपहर समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। डीजी श्रोता अब पेश है कार्यक्रम वंदना। वंदना में पहले सुनिए गांधी स्मृति। गांधी स्मृति में आज आप सुनिए देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी का विचार और उनके मनपसंद भजन।

0: कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना। किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापूजी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ। तो वो तो हरिजन के लिए है, रोहतक में तो अनेकों जिलों का है कि वह हरिजन तो हर जगह पर पड़े हैं, तो वह हरिजन कहते हैं। तो वो भी था हरिजन, तो वहां तो जात लोग पड़े हैं, शायद अहम लोग भी पड़े हैं किसी जगह पहले, तो उनके जगहों को सहसाई हो गया है कि वो हरिजन वो तो हमारे कुमार है, तो उनके पास से तो जो कुछ काम देना है हम लेंगे। और पीछे वहां पर देखो हक की बात आ जाती है, हक से नहीं, देखो तो हरिजन है ना, तो वो तो जन्म से ही हमारी कुमारी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी वो दे तो पिए, न दे तो कैसे रहे, खाना चाहिए हम दे तो खाए और वो तो भूखा रहे, और बोलना या दे तो हम दे तो ठीक है और नहीं दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकती है। तो इसको तो मैं तकबरी मानता हूँ। तो अंग्रेजी सरकार चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है। तो अभी जो बेचारे में तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर नहीं है, उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हम हमको तो अभी गुलामी में होना चाहिए कि हम मर जाए कि वहां से मृतक जिला को छोड़ दें, क्या करें। अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये एक समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको, जाते हैं कहाँ, रहते हैं कि नहीं, और ऐसा काम करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल तब पीछे ऐसी बात पर रहते थे तो उसका काम बिगड़ जाता है और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है। लेकिन हरिजन को तो गुमाने ही करना है ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए, वो तो बेचारे वो मजलिसों में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा थोड़ा सा बड़े बड़े लेकिन पढ़ते हैं, और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं, वो तो उनकी बात हुई। लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उनका क्या कहें। तो मैंने आपको ख्रिस्टियों का तो कहा, अब भी हरिजनों का, और अभी तो ऐसा हो गया ना, कक्षा अंग्रेजी सत्र चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे, हम उन सबको दंड दे सकते हैं, और हमको अगर जज के सामने ले जाते जज को ही दवा देंगे, जज हमको क्या करने वाला था। ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन ही जमा होते हैं। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की ईशान है उसमें आपको मैं हरिजनों की तो कई कथा मेरे सुनाऊंगा कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म परा है कर्म परा है कि उनको जो आज तक तो हम असूर मानते आए हैं कुरान जैसे मानते आए हैं वो तो हमने बड़ी बड़ा अधर्म किया, गलती की, पाप किया, उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक से बना है, प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं, बहुत किया भी है, लेकिन सब लोगों ने किया है, करोड़ों की अब संख्या में हिंदू है तो एक एक सारा दरिया पड़ा है। तो जितने उसमें हिंदू ने उन्होंने सब अपना ले लिए है, तो उसको ये कड़ी कथा आपको सुनाना भी क्यों पड़े। तो जब तक हम ऐसा करते हैं और अब भी करें, अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे, हाँ वही ऐसे हैं मित्र तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए। तो हमको समझना चाहिए तो उन पर हमारे ऐसे दुर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में, उससे ज्यादा उसका सबब ये है क्योंकि हमारे दुर्व एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है। तो अभी हमारे ख्रिस्तियों को

वो भी पंचम जाति है। पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है। चार वर्ण है सही, तो चार वर्ण का भी अर्थ ये तो है नहीं लेने वाले, एक ऊंचा और दूसरा ऊंचा, लेकिन चार वर्ण सब जितने पैसे हो सकते हैं। तो एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना, दूसरा का है कि धर्म का रक्षा करें, और तीसरा का काम है कि तिजारत करना। तो अपना पेट भर अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं, अपने लिए, लेकिन करोड़ पैदा करें और शुद्ध को भी हो, और वो सब प्रजा के लिए है। तो पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए तो शुद्ध है, तो वो सेवा करें, लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं।

ईश्वर का काम है कि तिजारत करना, तो अपना पेट भर अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ों रुपया पैदा करने के लिए नहीं, अपने लिए, लेकिन करोड़ों पैदा करें और शुद्ध को भी हो और वो सब प्रजा के लिए है। तो पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए तो शुद्ध है तो वो सेवा करें, लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं, साथ साथ बेच सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि जो शुद्ध है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है, तो भी उसको तो शुद्ध का भी मैंने सेवा का ही काम करना, सब सेवा है। जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, जो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, झाड़ू निकालता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है, चारों सेवा है। लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है उसके लिए बनाया, उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा, ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है, उसको भूल गई, उसका अनर्थ कर लिया, पीछे उसने से तो अनेक जातियां पैदा की और उसको पीछे पंचम भाव पैदा किया, तो वो तो सब हमारी गलती है, हमारी दृष्टिता कहो तो वो है, हमारे हम धर्म से हट गए इसलिए हमने किया, तो अगर हम आज के हमारे हाथ में बांधे आ गए हैं तो हम हिंदू हम सिख सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले, तब तो मैं समझता

श्रोतम, अभी आप सुन रहे थे देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी का विचार और उनके मनपसंद भजन। इसी के साथ ही गांधी स्मृति अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:45 हो चुके हैं। डीजी श्रोतम, अब पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए हरिहरन, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, नितिन मुकेश और साथियों से हिंदी भक्ति गीत। डीजी श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हरिहरन, सुरेश वाटकर, कविता कृष्णमूर्ति, नितिन मुकेश और साथियों से हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। डीजे प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत की इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए बेंजिया हेमंता और ताना तरम तारा से चंद नीशी आधुनिक गीत। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद निशी आधुनिक गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

0: श्रोताओ, इसी निशी गीत के साथ ही कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जेएनवी तवांग के 9वीं कक्षा की छात्र मिस सिरिंग पैटर्न से एक ऐसी महिला जो मुझे प्रेरित करती है विषय पर चंद शब्द।
1: ताशी दिलिक एन नमस्कार। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी सिरिंग पैटर्न, पीएम श्री जेएनवी तवांग में कक्षा 9वीं की छात्रा हूं। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है एक ऐसी महिला जो मुझे प्रेरित करती है। माँ, तेरी ममता की छाव में हर दुख मिट जाता है, तेरी मुस्कुराहट से मेरा हर दिन सच जाता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर सच यही है कि माँ के बिना जीवन अधूरा सा रह जाता है। अक्सर सभी के जीवन में एक ऐसी महिला या पुरुष होता है जो उन्हें प्रेरित करते हैं। एक ऐसी महिला है जो मुझे प्रेरित करती है, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। माँ मेरे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। मेरी माँ का नाम पेमा जांगमू है। उनका जन्म लुमला के छोटे से गांव ब्लैटिंग में हुआ। मेरी माँ एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बहुत मजबूत महिला है। वह हमेशा मेहनत करती है और कभी हार नहीं मानती। वह सूर्य के उगने से पहले उठकर घर के हर कामों को करती है। वह न केवल घर बल्कि परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से निभाती है। मेरी माँ सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे बाद को सोती है। फिर भी न जाने क्यों मैंने मेरी माँ को कभी थकती नहीं देखा, न जाने क्यों उन्हें कभी शिकायत करते नहीं सुना। मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, उनके पास डिग्रियां नहीं है, फिर भी दुनिया की समझ उनके पास सबसे ज्यादा है। किसी ने सही कहा है कि माँ भगवान का दूसरा रूप होता है। जब मैं दुखी होती हूँ तो मेरी माँ की एक मुस्कान देख मेरी सारे गम दूर हो जाते हैं। मेरी माँ का जिंदगी आसान नहीं रहा। उन्होंने अपने सपनों को त्याग हमारे परिवार के लिए अपनी जीवन समर्पित कर दी। कई बार उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबा कर हमारे जरूरतों को पूरा किया। जब घर की आर्थिक स्थितियाँ खराब थी, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हल्की सी मुस्कान लेकर उन्होंने मजबूत बनकर आगे बढ़ते रहे। उनकी यही ताकत और समझदारी मुझे हर दिन प्रेरित करती है। मेरी माँ ने मुझे ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करना सिखाया है। वह हमेशा कहती है कि अगर हम दिल से कोशिश करें तो सपनों को पूरा किया जा सकता है। उनकी देर और प्यार मुझे आगे बढ़ने का ताकत देता है। मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी पहली गुरु, प्रिय मित्र और मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा भी है। भविष्य में मैं उनकी ही तरह अच्छी, ईमानदार और मेहनती बनना चाहती हूँ। आखिर में मैं यह कहकर अपनी बातों को विराम देना चाहती हूँ कि माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है कि आंखें सोने से लाल हुई है या रोने

0: Sí, Dhanyavad en Jai Hind.
1: श्रुतम अभी आप सुन रहे थे पीएम श्री जेएनवी तवंग की नौवीं कक्षा की छात्र मिस सिरिंग पैटर्न से, एक ऐसी महिला जो मुझे प्रेरित करती है विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हो चुके हैं। डीजी श्रेता अब हम आपकी खिदमत पर लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इस कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म वेकअप सिद से, कविता सिद की आवाज में, शंकर एहसान लॉय द्वारा संगीत निर्देशन पर। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है श्रेया घोषाल के स्वर में फिल्म सिंघम से। गीत स्वनम किरकिरे के है व संगीत अजय गोगावली का।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म सुल्तान से, राहत फतेह अली खान की आवाज में। इस गीत के गीतकार है इर्शिद कमिल तथा संगीतकार विशाल और शेखर।

श्रोता, फिल्म सुल्तान के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा इस संदेश के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। डीजे श्रोता, अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म केदारनाथ से, अरिजीत सिंह और एसिस कौर के स्वरों में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य के है व संगीत अमित त्रिवेदी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए गायक जावेद अख्तर की स्वर में फिल्म पुष्पा से। इस गीत के गीतकार है रशीद आलम तथा संगीतकार प्रसाद।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, जस मनक द्वारा शब्द रचना पर फिल्म सतमेव जयते दूर से जरा एस खान और जैस मनक के आवाजों में, और इस गीत को संगीत से सजाया है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से देव नेगी के स्वर में। अमिताभ भट्टाचार्य के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओ, गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म आई हैड लव स्टोरीज से। श्रेया घोषाल और सोना मोहपात्रा के आवाजों में कुमार के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म लाल सिंह छड्डा से यह गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव के युगल स्वरों में। अमिता भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म चर्सी से सचित टंडन के स्वर में। शैली द्वारा शब्द रचना पर इस गीत को संगीत से संवारा है सचित परंपरा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम पेशकश हमने लिया है फिल्म तेरे नाल लव हो गया से यह गीत। आतिफ असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पंचल की आवाजों में, गीत मायूर पुरी के है व संगीत सचिन जिगर का।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 होने को है। लीजिए, अब पेश है कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए निसाद खान से सितार वादन तथा तबला पर संगत दे रहे हैं शेफत अहमद खान ने। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम राग रंग।

निसाद खान से सितार वादन तथा तबला पर संगत दे रहे थे शेफत अहमद खान ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही कुछ ही पल बाद यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा

0: नायक रिटायर्ड ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेते हुए नशा मुक्त युवा के लिए मिलकर कार्य करने का किया आह्वान। राज्य के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री न्यातो दुकान ने नामपंग स्थित पांगसो पास में भारतीय मारमिया सीमा हाट के पुनः संचालन का किया औपचारिक उद्घाटन। असम राइफल्स ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के खेती गांव के निकट एक पुल के नीचे गिरे वाहन को सफलतापूर्वक निकालने के लिए चलाया त्वरित बचाव अभियान। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही पापुम पारे और लोअर दिबांग वैली के लिए बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि सीमा कालीरामना ने महिलाओं के डिस्क थ्रो में कांस्य पदक प्राप्त किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच यह विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित की जा चुकी थी। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी हम मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के टी

0: ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वह हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
1: सदन की गरिमा के साथ सवाल किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ।
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों के घेर लिया और उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उप निरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सिर पर चोट आई है।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें डाउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट।
0: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों, स्वास्थ्य कर्मियों, कानून प्रवर्तक एजेंसियों तथा नागरिक समाज के नशा मुक्त युवा के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि नशे के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होनी चाहिए और इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने नशे की समस्या से निपटने के लिए व्यापक रणनीति अपनाने पर बल दिया, जिसमें रोकथाम एवं जन जागरूकता, प्रभावी निगरानी और जनसंपर्क के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा नशा मुक्त हो चुके लोगों के लिए कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें समाज के सम्मानपूर्ण पुनर्स्थापन करने की विशेषता पर जोर दिया। राज्य की व्यापार एवं वाणिज्यिक मंत्री न्यातो दुकाम ने नामपोंग स्थित बांसो पास में भारतीय म्यांमार सीमा हट के पुनः संचालन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री दुकाम ने कहा है कि व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्थानीय समुदायों, व्यापारियों तथा प्रशासन सहित सभी हितधारकों से सक्रिय भागीदारी निभाने और व्यापार के दौरान जीवन का सशक्त एवं टिकाऊ हिस्सा बनाने का आह्वान किया। बांसो पास के ऐतिहासिक और सामरिक महत्व का उल्लेख करते हुए मंत्री ने स्थानीय आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नामपोंग में शीघ्र ही लैंड पोर्ट स्थापित की जाएगी। असम राइफल्स ने तिराप जिले के खेती गांव के निकट एक पुल के नीचे गिरे वाहन को सफलतापूर्वक निकालकर त्वरित बचाव अभियान चलाया। घटना की सूचना मिलते ही असम राइफल्स के जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्गम भूभाग तथा कठिन परिस्थितियों के बावजूद सुनियोजित अभियान शुरू किया। जवानों ने उत्कृष्ट टीमवर्क, दृढ़ संकल्प और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए वाहन को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों तवांग, क्रादादी, नामसाई और तिराप को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही पापुमपारे और लोअर दिवांग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कल रात ग्लासगो में भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया, जबकि सीमा कालीरामन्ना ने महिलाओं के डिस्कस्थ्रो में कांस्य पदक प्राप्त किया। ऑस्ट्रेलिया 110 पदकों के साथ स्टैंडिंग में सबसे आगे बना हुआ है, जबकि 8वें दिन भारत 17 मेडल के साथ 10वें स्थान पर रहा। भारत के मेडल की संख्या में 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: जन्म और गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शब्दशाची भट्टाचार्य। Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer, Dilip

对对对对

0: हायर सेकेंडरी स्कूल चे नुमला क्वेश्चन से नेगा कोनो नम लोसन जदी नते
1: दत नुमला सखों नेगा ति सोइने द चुक द सेकेंडरी ने हायर सेकेंडरी जित लागा ग्रां था बोंग तलीम त तंगा तो हायर सेकेंडरी थी नंबर मो नुमला इमर सेकेंडरी जि जिमि था दी नंबर द प्राइमरी ने दंगा ता इज जेंडर लेंगे गा ने सब जि फचेंग ओक लागा ग्रां था बदी मनो जि कोंदा नि शियु शिंदरी दंगा ता इज जेंडर गेट का सखने गा द मिडिल स्कूल चे तद गता उमो नुमला सगों जे तद ब्लॉक नै नोमे ओय नुमला ब्लॉक जे तद मिडिल गेट दोक थिनो मेना संबोधिनी ओय बुल तद मुरक उमो जिमितां तुदों गर ब्लॉक जे तद मिडिल निस्लु थी आनो मेना समला तिनिलास
0: लेस तैतम नेक जी तुदों गर नि जिमितां ब्लॉक ने नोबिस तैतम कुम ब्लॉक ने छे मिडिल स्कूल निस नि मे ओरे इतम ने छे जुक ता उजुमांगे मुथि या शुना ता इतम गे स्कूल चित कोचु या ता तुम को गेनि हेडमास्टर से नोते
2: पर दुदुंगर स्कूल न्यो मा ता रेकॉर्ड काते सुइना 1967 से गोचो गोतो इनुक छने 1967 चेंगा ता प्राइमरी गोतो दि गोचो छन
0: लेस
2: इचिक अमुक तोर या या 1986 इचे इचिक ता अपग्रेडेशन तो दि घरुक छने याकुले स्कूल चिन मेशोर दि रासुक छन ब्रेका
0: लेस
2: इचिक याकुले 2000 नाक रेकॉर्ड बजेट स्कूले मेशोर राय या रेकॉर्ड मजे दि ची सरुक छन इचिक याकुले 2000 नु युचिक तो इचिक रेकॉर्ड चिका ते घर पन उतन रेकॉर्ड लर दिने 1967 से गोचो नि याकुले चिक 1986 छे अपग्रेड ध्यान स्कूल
0: अपग्रेड ए मिडिल जो वा
2: मिडिल जो नि मक छन
0: लेस अन द स्कूल गोचो तो तम ते छम लगेन मे ओरे 86 का सूर्यन न दा तम खेने लगेन मे इजे बो ता चिक अमा दते तंग लंगे नि बामु चे दा केगन लंगे ता गोलो दिन नो
2: तंगर अमा केगन दत मतो चे ngar केगन ची ngotodini chikna ngar tgt nei ngotodini chik prt ber nis ngotodia chik ngar ta guest teacher ngina da chik uka jungnang se sponsor la ya ya sponsor thok ya geran berom nei ngotodin naunom chik ta guest teacher thi ngar mo chenik thok ya chik tong gun pusin na ya guest teacher thi oya ya no
0: les chik go mite mil nge ta nginte te gongzu bi te no me ore chik de ngar stop no na
2: मिड डे मील से हमारा दा बुझ छे बने टोटल 120 ओ तो देनम चिक छुंग सी 100 ले ला ने ने चिक 100 सम पुचे मिड डे मील का स्टाफ नहीं कुक तब छे जोगा नहीं ओ तो दिन नंदर चिक 100 ला ने ने सुम ओ तो दिन आया तंगर मो 130 ओ तो दिन नोक्षन या पुले चिंगा से तब छे जोगा सुम ओ तो दिन ता नोक्षन
0: प्लस ता दिदुम गर छी थी मर दा ता प सालुम ने गाइ मोरे सालुम ने या पुले चिक मो लोटु बा छी नंग युसो गचे गचे नि मोशो
2: ता मो पुत मजु मजु दि तंगा ता मो सालुम ने ग्रा नोम थर बुटन बरो शोक या न ब्ले तंग या Surga Chelangdong ye yilanam yurtat yur khonne bene marme lodung tungser ye itak murja ba matma jite umnya granam la
0: les ne to lobsa min jin jade jun ta itang ko school meng jiti bm shiring ye thong wedang bm shiring yo jeda school gangpo she thobung de munu chen government middle school kunse sha bm shiring yo jeda thap ko dang utnya ga selection ra ko dang ning ichi da bm shiring meng jit kachik to jong wenam uduk ta mixe gimsen de dowa
1: Let's the sir inang sinang to the mayor thi that also gotum sini that the PM shiring ye gala nyo thekning de shung gambo PM shiring no anyo lo athini chena nada chen ye pul dangari ha mos de re te shuk mina yar ek tha ngri ji ko chen ye pul ta de mina pina shung chashi thekning bina siji de no chini sir ta tang atang shung lop taninga yor yor thi nom thin de it nin ye de bina khachi de mina dom ya ya I chalem di donang otul di dai ka chala la na halem di lak di sang ya ya da biri ji shuk ti ut PM shiri ba tu namna di rasu ne ne ti it macho macho macho it chi ya ya काम चुई मोदल अच्छा चला तो नुकसानी तब मुरुक ओमो पीएम श्री चुई या फजे तुम रित नेलु मोदल थी तुल दी गई ला वही बोल दस साल चे गाने चे तब मिक्सी की तब पेंजो रो थोगा दर्शन मुनो ऐ लारो स्वे दिन या ऐ मॉन्शिंग दरी दिका का उनका चला ला रिम्बर ब्लैक बोर्ड ला रिम्बर दे बुजुना जिम मशन मोला रिम्बर दिका का एका टीवी ला रिम्बर ऐ दे लाख दियो या दिका का इसके हलम दिखे भी नहीं समझना दिनी ला
0: लेसो ता तानिक रिजल्ट चिनंग गए नी क्लास केजी के क्लास 8 सक्चे 5 ने 8 की थी दंगा तो बॉडी में ओरे इजो जन्म द क्लास केजी के 7 सक्चे गए नी रिजल्ट
2: रिजल्ट शतो इन द सर से नंगो द 5 ने 8 चित दंगा ता अरुणाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड नेगा एग्जाम दि लोंदम उचे यकुल द 5 ने 8 रिजल्ट चित मोतो दि ती होंडा चिक ताने मोतो देगा 100% नोक छनी पुच नंगा के पास है नमदार सुक्षन
0: प्लस
2: इच क्लास 1 ओके 4 निंग 7 8 नेगा चिक रिजल्ट चित ता गता परसेंटेज का शतो इन न फजे 85 86% मोतो दि नोक छनेला
0: लेसो स्कूल का डिक्लम का तेर गोसो रना यिगक तो का तेर गोसो रना इत मेनो को तक को करिकुलर एक्टिविटीज तो माफ दि नंबर तंगे तत ग्रैनी दिया ना नो तो रूटीन लेखुंग ते तंग को डीडीएसएस आपे तेंगर ओ फिक्स यूसो डीडीएसएस आ बोचो फिक्स यूसो छि निनिंग द 2025 अप्रैल का तारीख चीनी छि ओ डीडीएसएस आ फिक्स यूसो द निनिंग अप्रैल 8 का तो 15 सक छि तंग को सो डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंटर स्कूल मीट या ने मेरे ए जे दा तंग को सो मिडिल स्कूल सक छि लोप टू बनन का अपोजिट से मो किंबोर यिग किंबोर समर किंबोर दुम्ब्राति वतो दे टेंडो यागाचे इदं कुनसे मिडिल स्कूल चिती अंग दाव प्रसुक ताम देते इजक निपे चिती रेसिडेंशियल स्कूल मेलंगर रसो को डीडीएस साबे आइ नथने इजा पोटाई चे मिडिल स्कूल उसुक सने नो मोचिक नेगा

0: jung hostel building di chenyu nam da it building ne chai chinga re da lam adjust ya mena hostel nyang ka mosho ma ji de tha cho ji ka ta jung building la nam itna nya so a nyai putan dang gang po che manager ya o yin yu nam la
1: le so ta chi dam ka ita school infrastructure ko de shu go so ra na itna da ta ka ne ton jin ba chhu go so ra na
0: ta infrastructure ka de gun da ma chma chhe te kru nom chin dar da hostel ji thalam de ton rang hostel da te beta om jung sing a ta chi building bi ni nam chup ta hostel nga nya pul nga ri khyon num sa bu chu khesum go de nyu nam 16 numbers go de nam itna ga maza motion on them da jete khurna deshno ada ta sex ratio chit bulmin na motion ni me jete go pam bulmin mang khrai chit bulmin nang ta school boundary ne nga ni ya chit buzu ba chit minang halam di te khuru in ne per halam di nga ta school kyap cho chiga building la nom da man kang building ya go so ywa ber building tong pula ne itnya chiga khur buzu jang chit ye chit nga tang jer gan na se je nop chiga ti to na ya oi ya ni nom la
1: leso de school la munu me
2: ta gete ngobju tham ngotul di sar mo hostel gan
1: hostel ga ya
2: tham ngotul da de school in
1: de school la pita kemo rodo me
0: ta mina da hostel chukui na chit na ta ngol ma headmaster zurpa chrungwa chula benang e khamya da minang e chukui na chit da benang e mina ngokri ya yom da na da je de gobul minang tor bleteng buri sho ga putse mina da der chamu na mina rik nam na no la mina khem ka nyai ap to thi ka ki ne sum lu dil ram e motong khem da rang ra go sumi munu chi gi itle te ya chik minang e chim zurpa si mina chik omo choi choi chik khem dup la ne na ga khem dup chi ga e chik ka ham zuk thai mene sha ejik shuk shuk nyak projek sar nam phep char sa ajik sar ning gang bo shi ga dang pong pong ya da pher ut ka gogol la din ni ni pong pong ya ajik shuk ejik hostel building chin angro ta jok buzu ba chi to yesuk ta ya ajik dunu rang ge kor bul ta ajik ga da mo kilometer lenga le tharing sho ta shung luk se ga ya utun din nok chon kilometer lenga le tharing sho buzu ba chi ma cha di mo su ya ajik go help tum ejik pe dang re ga ing ne ngar mo sang gar di dung gar gun se ram yang mal ling yi la nam ejik pe dang buzu na rar te yu nam ejik se umuk thor buzu ngop chung ho to di pe dang de sro de ejik ta jok kilometer lenga le tharing sho buzu ba chi hostel ga nam la
1: तो लोसन जिन लाई न थे हॉस्टल का सुकन बाच डेस्कुलर या न सिटी रक्षो नोमिना समोला दे उजुक त मिक्स एक झमझन लादे ने बो
2: सर से नंग ओतल टेन टेन इचे खेबर थे जदी नोचने सर जितांग सर डेस्कुलर या ने खेबिन लादे ने सी हेन दे मना किम जेगे या फार्मेसी लब जे सांबे लादे यम सर हजु मना फार्मेसी डोलो डोदांग लेगे या तां लोपी लादे यम पर किंते ये तो वशा तो इन सर ददंग अतांग मनिंग आ नेतांग आते सोइन फमवत मचांग ओतल दी जुक्लब जोंग मुनुले तिन या या मना जु मारे खेमा जांग थोंग जे मचा आइ का लेगल को नि या जिक बुजना से सुसुरन खुरिया इग जाना है दका फमवा जिक इग जना आ जिक हजे का लेगे या नि या जु बिरिक का हॉस्टल का मेनकन बा छि ये तो हाल देकांग रोदला सिन ने तिंग आ तो हॉस्टल छि दे बिर एक सुकन बा छि मिना टाक्षु दे जुरु दुन ने तंगुरुप अम्मा थी ने दे मिसे की शुंग देगा दे मुनुम शिंदरी या वार्डन जी ना या मुनुम शिंदरी तंगा तंग गैरगन ना दे तंगा तंग थीरी थीरी बांगलम या या या जो नाने चुदे लेने वाले चुदे जिगा बुझे ना मुनी साफ दे जो बिरचेता तो या और जो दे इत गैरगन बिना ड्यूटी नेकन बाजी की गैरगन शनम ना शे बेगे शु और जो इका नु ब्राउन जी का क्लास एक्स्ट्रा लॉन्ग ओसो वार्निंग लुप सिंह चुशो नेकन ना शे दे ओया जिन हक लॉन्ग ओसो वा ओया दी या या हॉस्टल का सुगन बाजी जी तेन तेन सर इगा यंबुर जो इका शनम से मुझे दुर्गा यंबुर खेबिन तेन दिला दे नीला सर चिनाए तो मुरुक उम्मा क्या ची क्या था मुनु चुके सर कांगे दर्शन मुनु थी नी और एक बोलता तो पन नाचे शुसुनो जो दिया गा था उसे एक सांड डीडीएस सांड नंग सांग मशी शुसुनो माँ बंगाल से उनका रेसिडेंशियल रिलेटिव दो इन्हें हमारे खेलने दम जाया न्यूनो सर उन्हें टाइम ने क्वालिटी एजुकेशन ये लोग जो पूरे दाग बोते हमारे बिल्डे बनी सिंह है ना दादा ने कब फिशादी ता फिका नोले तीन या सर नौ नौ जिगा दें हमारे इगा जनरला काम कंबाइन क्लास लोहिं या पुलिस हमारे जो इसके लोग में मतों में सर कहाँ है थमना देनी और ये पुलिस सर हॉस्टल का जुगन चीज तीन दिन सर आता ये तो का यार्की गई का खेबन नहीं ला
1: ये जो तंगे मुट्ठी है जो लोकसभा जिन्ना चले जो ना अरुणाचल प्रदेश से बॉडी टीचर माफ दिन को जो नंबर तुनु ये ता तुम ग्रान ये जिंगा ता जो तवंग ने तुनु ये सर्प खाची थुरियुक मर वेस्ट कमिंग शो का इन्हें सर्प खाची थुरियुक ता ते शुंग छेचे ने नोक्षन अमा ये बॉय क्लब फिर नेक्स्ट समदर इचे बोता बुझु चिनांग दा लोटो बिरवा नंग गयानी ता ते ता मा क्लास 5 6 7 8 ओ चिनांग बॉय तो का तेर को सुरा नंग गय गयानी कोतुन कोतुन लखनो नि बिरवासे
2: Alas sir, sar se utz diwutu terjemunu angai ketem di angai jenjedu. Zin he nasi angai halam di, angal kumdek ti ayatam di susu he nasi. Tato oto headmaster si angal ikule na, angal se chong di kong ya ya ajuk. Tato boyik tu angatang si nomnyu nuk subject nang diuka ajuk. Percentage si uka angatang si utka kyun tum guinek ba moit tum angal si ayasam sulde ayashirte nasi sar binasi utz tum usok hatu di ni ajuk. Angal kerjaan na he nasi kacik dan nasi sir. Sehingga nang atang tato tu tong nang ayam berumur lop tak ayam, tegak kaki yang zit hidup ni, nasi. Sehingga ich boleh kak ich angin ich sah nombin cik ayam nang atang lop tak jenak persen cik ayam atang ich kian dom mayam sah. Ayuh bul tegak kaki bujak sam loga ayat, ut boleh tu tu cik gedem ni menok cuni ut persen cik ayam jenak kat sini mon, wajuk kelas nian salang kesakon ut monum sam ayat, wajuk piri ut sem gani ayat boleh kak dona biman ayat, wajuk umang uruk umang boleh kena nian sengi kena sengar sya, sam jor yang sengar dete shonder. इज नारे इने ता उत केवर मुचि गाथंग चवे लमक गशि नका बय जांगोसो दनु इत गाथंग आ यगि थि यनुम उत ता गेथिं दि यनुम ये ता नारे तानिं जि था चुतो येन सर इज बय का इज अंगे छि शान मतलब चन देका खन दुम याया ता परसेंटेज शंबुल बुजना परसेंटेज का हलम दि न्यूजो लगैला

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम जरोखा से पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वन लुमला एसटीएसी तवांग जिला से प्राप्त सूचना अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के वन लुमला एसटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या किसी नाम पता अथवा अन्य विवरण में संशोधन करवाना है तो निर्धारित प्रपत्र भरकर 21 जुलाई 2000

2026 से 20 अगस्त 2026 तक संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जो नागरिक 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय तवंग से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुआ। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम शेदुन लेरिम के अंतर्गत यूथ वेलफेयर एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन सोसाइटी मुक्तो के लम्मा संगीत सेदर और साथियों से ड्रोइच हो। 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार शाम के 7:05 पर। शाम के 7:10 पर सुनिएगा गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितेंग के 5वीं कक्षा की छात्र मिस छोटन यांगजम से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक रहेगा टीम वर्क। आज शाम के 7:11 पर सुनिएगा आप कार्यक्रम दर्पण। इसके अंतर्गत आप सुनिए प्रीतम द्वारा संगीत निर्देशन पर फिल्म छिछोरी से तुषार जोशी, फिल्म राजनीति से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा, फिल्म ट्यूबलाइट से आतिफ असलम, फिल्म बॉडीगार्ड से ऐश किंग और क्लिंगटन सिरिजो, फिल्म यारिया से आतिफ असलम, फिल्म किस्मत कनेक्शन से आतिफ असलम और अलका याग्निक, और फिल्म शहजादा से शशवंत सिंह और सलमाली कोलगरे के आवाजों में चंद गीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम के 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज शाम के 7:50 पर। शाम के 7:55 पर आनंद लीजिएगा एक देशभक्ति गीत का, गायिका लता मंगेशकर के स्वर में। आज रात 8 बजे का वक्त रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन 8:30 पर, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9:00 सुनेंगे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित की जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 1 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह कल हमारे सभा आरंभ होंगे दोपहर के 2:00 मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। दोपहर के 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे गायक अनूप जलोता से चंद हिंदी भक्ति गीत। 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे गायक मार्तो कमदक से गालो आधुनिक गीत। दोपहर के 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे पीएम श्री जेनवी तवंग के 8वीं कक्षा की छात्र मिस यशी लामो से एक जीवन का अनुभव जिसमें मुझे बदल दिया विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर के

बजकर 33 मिनट पर आप सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। इसमें कल आप सुन पाएंगे फिल्म जब हरी मेट सेजल से सुनिधि चौहान और शाहिद मौलिया, फिल्म आई हैड लव स्टोरीज से श्रिया घोषाल और सोना मोहपात्रा, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से श्रिया घोषाल और अरिजीत सिंह, और फिल्म हैना से मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर के स्वरों में चंद नगमे। कल दोपहर के 3:50 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। इसमें कल आप सुनेंगे फिल्म ऊंचाई से नकाश अजीज, फिल्म ब्रह्मास्त्र से तुषार जोशी और श्रेया घोषाल, फिल्म हीरोपंती से मोहित चौहान, फिल्म रईस से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर, फिल्म जब वे मेट से शान और उस्ताद सुल्तान खान, फिल्म मुन्ना माइकल से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान, फिल्म बागी से मीट ब्रोस और मोनाली ठाकुर, फिल्म एक विलन से अंकित तिवारी, फिल्म शहजादा से सलमली कुलघरे और साथी, और फिल्म गजनी से जावेद अली और सोनू निगम के आवाजों में चंद गीत। कल शाम के 4:30 पर शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग, 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम के 5:30 पर आप सुनिएगा दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में श्री संगे टाशी से। शाम के 5:35 पर सुनिएगा मोनपा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स तवंग के कलाकार मिस थुतन सोमो से मोनपा लोकगीत। कल शाम की 6:00 लेरिम सेरा, 6:20 का वक्त रहेगा यूथ वेलफेयर एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन सोसाइटी मुक्तो के नामा संगे सेतर से ड्रोइछो। शाम की 7:10 पर सुनिएगा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कल शाम के 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम साज और आवाज। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे फिल्म कश्मीर की कली से मोहम्मद रफी और फिल्म सिलसिला है प्यार का से अलका याग्निक और कुमार सानू के आवाजों में चंद नगमे। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम के 7:45 पर तथा शाम के 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल रात के ठीक 8:00 सुनेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल, आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि की ठीक 9:00 सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम झरोखा अब यही पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे मनपा में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के

0: अर्थ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रीड XWG डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले इलाकों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours totaling 10,000 megawatts.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज है, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर PV फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: The Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 8

0: अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमेटन के पांचवी कक्षा की छात्र मिस चटन यांगसुम से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक था टीम वर्क। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: मेरी उम्र 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हो चुके हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम दर्पण। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए प्रीतम द्वारा संगीत निर्देशन पर चंद नगमे। श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म छिछोरे से, तुषार जोशी के स्वर में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य के हैं व संगीत प्रीतम का।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए, मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की स्वरों में फिल्म राजनीति से। इस गीत के गीतकार है इर्शिद कमिल तथा संगीतकार प्रीतम।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यू ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा शब्द रचना पर फिल्म ट्यूबलाइट से, गायक आतिफ असलम के आवाज में, और इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओ, दर्पण कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म बॉडीगार्ड से, एश किंग और क्लिंटन सिरिजो के स्वरों में। नीलेश मिश्रा के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म यार यासीन। गायक आतिफ असलम की आवाज में इर्शाद कमल के लिखे बोल पर इसे संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रुतम, अभी आपने आनंद लिया फिल्म शहजादा से यह गीत शशवंत सिंह और सलमाली कोरगरे की आवाजों में। इस गीत के गीतकार हैं श्लोकीलाल तथा संगीतकार प्रीतम। श्रुतम, कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है फिल्म किस्मत कनेक्शन से आतिफ असलम और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। शहीद कौधरी के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की थी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच यह विधेयक पारित हो गया। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपोर्टल कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद की जाएगी। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज बच्चों से जुड़ी उभरती चुनौतियों जिनमें मानव तस्करी, ऑनलाइन शोषण, नशीले पदार्थ का दुरुपयोग, बाल विवाह तथा सीमा पार सुरक्षा संबंध जोखिम शामिल है, उन सभी से निपटने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को और सामूहिक कार्रवाई को और मजबूत करने का आह्वान किया। तवांग में आयोजित पूर्वोत्तर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार है जब पूर्वोत्तर के सभी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग केवल बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के उद्देश्य से एक साझा मंच पर एकत्र हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में बाल कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री खांडू ने विशेष रूप से बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्यभर में 134 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की जा चुकी है। ईस्ट सियांग पुलिस अधीक्षक पंकज लांबा ने आज मुस्कान 2.0 के शुभारंभ की घोषणा करते हुए कहा कि यह पहल जिले में बाल सुरक्षा कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाएगी। ईस्ट सियांग पुलिस के प्रमुख एवं व्यापक बाल सुरक्षा पहल प्रोजेक्ट मुस्कान अरुणाचल प्रदेश में बाल संरक्षण का एक अग्रणी मॉडल बनकर उभरी है।

0: अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक संचालित परियोजना के प्रथम चरण में जिले के 104 विद्यालयों को शामिल किया गया था, जिसमें पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से 16,897 विद्यार्थियों तक पहुंचाई गई थी। कार्यक्रम के तहत बच्चों के अधिकार, गुड टच बैड टच, पॉक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा तथा बुलिंग की रोकथाम जैसे विषयों पर आयु के अनुरूप संरचित जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। अपर सियांग जिला पुलिस द्वारा आज यिंगक्योंग स्थित उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय एनकोट समिति की 21वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा कर जिले में नशा विरोधी अभियान को और मजबूत बनाने के लिए नई पहलों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त तालो जेरांग ने नशा मुक्त अपर सियांग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आपसी सहयोग, निरंतर जन जागरूकता अभियान तथा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अपने प्रयास तेज करने का आह्वान किया। ईटानगर स्थित ब्रह्म कुमारीज द्वारा नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त अरुणाचल के राष्ट्रीय संकल्प के अंतर्गत 10 करोड़ नशा मुक्ति शपथ महाअभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ आगामी रविवार को जोलंग स्थित ब्रह्म कुमारी राजयोग केंद्र में आयोजित की जाएगी। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय नशा मुक्त भारत अभियान तथा मिशन संपन्न और अंतर्गत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य नशे के दुरुपयोग के विरुद्ध सामूहिक संकल्प को मजबूत करना तथा स्वस्थ, सुरक्षित, सशक्त और नशा मुक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा देना है। रिवाज के आरोग्य पंचकर्म आधारित वेलनेस सेंटर ने लोअर दिबांग वैली जिले के जिया में सफलतापूर्वक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ये शिविर जिले के दूरस्थ एवं स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुर्वेद आधारित वेलनेस सुविधाएं पहुंचाने की केंद्र की सतत पहल का हिस्सा था। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों तवांग, क्रातादी, नामसाई और तिरप को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही पापुमपारे और रोवा दिबांग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने आज ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, दिस इज Shubhashachi Bhattacharya with regional news. Chief Minister Pema Khandu today called for stronger regional cooperation and collaborative action among the northeastern states to address emerging challenges affecting children, including trafficking, online exploitation, substance abuse, child marriage and cross-border vulnerabilities. Addressing the inaugural session of the Northeast State Commission for Protection of Child Rights Convention 2026 at Tawang, Sim Khandu termed the event as a historic milestone, marking the first time that all state commissioners for protection of child rights from the Northeast have come together on a common platform dedicated exclusively to the causes of child rights. Highlighting Arunachal's commitment towards child welfare, Khandu outlined a series of initiatives aimed at empowering children, particularly the girl child. He informed that under the Dulari Kanya scheme, more than 15,500 girls have benefited from financial assistance for higher education, with the state investing over rupees 38 crore. He further noted that over 134 awareness programs have been conducted under the Beti Bachao Beti Padhao initiative across the state. A Northeast SCPCR convention souvenir was also released on the occasion. East Siang Superintendent of Police Pankaj Lamba today announced the launch of Muskan 2.0 and stated that it will further strengthen child safety initiatives across the district. Project Muskan, the comprehensive and flagship child safety initiative of East Siang Police, has emerged as a pioneering model for child protection in Arunachal Pradesh. Implemented from October 2025 to March 2026, Phase 1 of the project has successfully covered 104 schools across East Siang and reached 16,897 students through Police Ki Pathshala. The program delivers structured, age-appropriate awareness sessions on child rights, good touch and bad touch, POCSO Act, cyber safety and bullying prevention. As part of the initiative, 104 child safety complaint boxes were

श्रोताओ, इसी देशभक्ति गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है कोपरगांव से सुरेश मलोडे और वर्षा मलोडे और शिवगांव से श्रीराम गोंधाली और उषा गोंधाली। आप सबकी पेशकश पर पेश है फिल्म जाने की राह से यह गीत गायक मोहम्मद रफी के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने और इस गीत के बोल है आने से उसके आए बहार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मजनू का तिल्ला, दिल्ली से कमोल बलूचा, मधु बलूचा और सागर बलूचा, और सतना मध्य प्रदेश से आप है उमंग मालिक, आकांक्षा मालिक और माही मालिक के पसंद पर। आइए सुनते हैं फिल्म मंजिल से यह गीत, गायक किशोर कुमार के स्वर में, योगेश द्वारा शब्द बद पर इसे संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने, और इस गीत के बोल है रिमझिम गिरे सावन।

श्रोताओ, इस वक्त आप व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाइशी गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप श्रोताओं की पसंद पर आई सुनते हैं फिल्म फर्श से यह गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत निर्देशन पर आनंद बख्शी के लिखे बोल पर इस गीत को आवाज दे रहे हैं गायक मोहम्मद रफी ने। इस गीत के बोल है मस्त बहारों का मैं आशिक़।

श्रोताओं, अगला नगमा पेश करने की हमें गुजारिश की है पद्मा टॉकीज नाभानगर मध्य प्रदेश से। आप है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, खुशाल शाह, नीति शाह,

रवि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह, आप सबकी पसंद पर आई सुनते हैं फिल्म पगला कहीं का से यह गीत, गायक मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी द्वारा लिखी बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के बोल है, तुम मुझे यू बुला ना पाओगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित अहुजा। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म दो रास्ते से यह गीत गायक मोहम्मद रफी के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे बोल पर इसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वत्सा फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वत्सएप जरूर करें। हमारा वत्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी रात के 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9:00 सुनेंगे न्यूज़ @9। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। मुक्केबाजी, जूडो और एथलेटिक्स में कई खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बनाई। विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत और दो कांस्य पदक जीते। और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन ने आज एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा की।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से जो ग्लासगो में जारी है, जहां भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है अलग अलग खेलों में, चाहे मुक्केबाजी की बात कर ले, जूडो की बात कर ले या एथलेटिक्स में बात कर ले, तो सब में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन आज भी जारी है। मुक्केबाजी में कई भारतीयों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। विशेष प्रतियोगिता अंतिम रूप लेने को तैयार है और ऐसे में आज मुक्केबाजों ने अलग अलग वर्ग में कैसा किया प्रदर्शन?
1: जी प्रशांत, भारतीय मुक्केबाज जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं भारत के लिए। अगर आज की

0: बात करें तो हालांकि 10 पदक भारतीय मुक्केबाजों ने पहले ही सुनिश्चित कर लिए थे, लेकिन प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम में जाम्बिया की कैथरीन वापे को हराया। वहीं पुरुष वर्ग में अंतिम पंघाल ने कनाडा के जोशुआ ओफ्रोई को 5-0 से हराया।
1: जी, प्रीति पवार का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, और सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रीति ने।
2: प्रेशर नहीं है, बट ऑफकोर्स फाइनल है तो मुझे और प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए, और मैं अपना गेम प्लान बनाऊंगी उसके अकॉर्डिंग। आई विल गिव माय बेस्ट। बिल्कुल कम टाइम है मेरे पास, बट मैं अभी प्रिपेयर करूंगी नेक्स्ट ओपोनेंट के लिए, मेरे को कैसे खेलना है। लेकिन ये सबके लिए है क्योंकि पूरे इंडिया के होप्स है मेरे से, और सबकी प्रेयर्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तो सबका सपोर्ट है, और ये मेडल भी सबके लिए ही है।
0: जी, इसके अलावा प्रशांत, जो है जैस्मीन ने 57 किलोग्राम में जगह बनाई है फाइनल में, और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम के फाइनल में जगह बनाई है।
1: विशेष, आपने बहुत कुछ बताया मुक्केबाजों के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा पदक जो है वो मुक्केबाजों ने ही भारत के नाम किए। आज कई मुक्केबाजों ने फाइनल में पहुंचकर रजत पदक की जो उम्मीदें हैं उसको कायम रखा है, और ऐसे में आज कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका मुकाबला भी जारी है और उनका मुकाबला और होना भी है आज।
0: प्रशांत, जो मुकाबला मुक्केबाजी में अगर कहें तो जादूमणि सिंह जो है वो खेल रहे हैं अभी, और इंडियन मिक्स टीम जो है रिले की 4x400 मीटर के फाइनल में पहुंच चुकी है। तो पदकों की उम्मीदें हैं वो सिर्फ मुक्केबाजी से नहीं है, अन्य खेलों से भी लगाई जा रही हैं। लॉन बॉल में भारत का प्रदर्शन आज बहुत ही शानदार रहा है, जहां नवनीत और दिनेश ने 6-3 और 10-1 से इयान बांस और ओलिवर थॉम्पसन को हराया, तो इससे उनके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ साथ कई अन्य खेलों में भी भारत ने जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
1: अन्य खेलों की आपने बात की, जिसमें जूडो का भी हम देखें, तो जूडो में किन खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा विशेष?
0: अगर प्रशांत बात करें तो अस्मिता डे और हर्ष सिंह यामिनी मौर्य ने, इन्होंने अपने अपने वर्ग में फाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए जो है पदक सुनिश्चित कर दिए हैं। और महिला 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता डे ने बेहद रोमांचक मुकाबले में आज स्कॉटलैंड की समर शॉ यूको को हराया है। और इसी के बाद पुरुष के 60 किलोग्राम वर्ग में हर्ष सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के पेड्रो कॉर्लेस एंटोनो नोटो को वाजा आरी के आधार पर हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला 52 किलोग्राम वर्ग में श्रद्धा कदुवाल चोपड़े पदक की दौड़ से बाहर हो गई हैं।
1: आज देर रात भी कई मुकाबले खेले जाने हैं विशेष, किन किन पर खिलाड़ियों पर और खेलों पर निगाहें होंगी हमारी?
0: सबसे ज्यादा निगाहें हमारी आज होंगी मुक्केबाजी पे, क्योंकि साक्षी 51 किलोग्राम में, प्रिया 60 किलोग्राम में, लवलीना 75 किलोग्राम में, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम में भारत के लिए मुक्केबाजी में चुनौती पेश करेंगे।
1: विशेष, आज तो कई खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लास वो में जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है इसमें आज ही भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन शानदार रहा। कल भी कई खिलाड़ियों ने देश को पदक दिलाया, जिनमें लवप्रीत सिंह है, सीमा कालीरमन है, जिन्होंने देश को पदक दिलाया, तो क्या कुछ रहा उनका प्रदर्शन कल?
0: देखिए, अगर लवप्रीत सिंह की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, और 110 किलोग्राम से जो भार वर्ग में उनकी जो कैटेगरी थी और उसमें 176 किलोग्राम का क्लीन और जर्क सहित 212 किलोग्राम वजन उठाकर भारत को रजत पदक दिलाया है, और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी उनको जो है बधाई दी है। वहीं अगर हम सीमा कालीरमन की बात करें तो वो कई सारी कठिनाइयों से जूझ रही थी, उसके बाद भी उन्होंने भारत की झोली में कांस्य पदक डाला है, ये बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए।
1: आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सीमा ने पदक जीतने के बाद।
3: AFI काफी सपोर्ट कर रही है, SI काफी सपोर्ट कर रही है, मैं अभी फिलहाल NCL पटियाला में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और JSW काफी हेल्प कर रहा है सर, तो अगर इसके अलावा भी मुझे कुछ अलग से कुछ चाहिए होता है तो घर वाले इस चीज़ को मैनेज कर देते हैं, क्योंकि ये सारा हार्ड वर्क वगैरह जो कुछ भी है वो सब मेरे हस्बैंड की वजह से। अगर आज वो शायद अगर यहाँ पे नहीं आए होते तो हो सकता है गोल्ड मेडल में मुश्किल होती, पर जो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है वहाँ पे खड़े हो गए।
0: और प्रशांत, इसी के साथ पुरुषों की 4000 मीटर साइकिलिंग स्पर्धा में जो है भारत की चुनौती आज खत्म हो गई है। भारतीय खिलाड़ी दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह, राष्ट्रमंडल खेलों की ये जो 4000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट साइकिलिंग थी उसमें सबसे निचले पायदान पर रहकर आगे बढ़ने में जो है नाकाम रहे हैं।
1: जी बिल्कुल विशेष, और आज जो भी मुकाबले खेले जा रहे हैं और जिनमें भी मुकाबले होने, हम सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं और ताकि वे देश के लिए और भी पदक अपने नाम करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है।
4: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम।

0: हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: और अब बात कर लेते हैं रेसलिंग पर। अजरबैजान के बाकू में जारी अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उन्होंने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। सुनते हैं सरफिरोजी की एक रिपोर्ट।
2: 57 किलोग्राम कैटेगरी में निकिता सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि फाइनल में उनका प्रदर्शन उनके अनुरूप नहीं रहा। फाइनल में अमेरिका की मौजूदा अंडर 17 वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट एपेनेसा एलिसन निकिता ने 6-0 से उन्हें हरा दिया। निकिता सहरावत ने दूसरे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता। वहीं 49 किलोग्राम कैटेगरी में कामना बाबल ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया। जापान की साइका चीडा से सेमीफाइनल में हारने के बाद कामना ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में रूस की इरिना स्तीवा के खिलाफ शानदार वापसी की। भारतीय पहलवान ने कड़े मुकाबले में अपनी प्रतिद्वंदी को 3-2 से हराकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। देश के पदकों की संख्या में इजाफा करते हुए गरिमा ने 73 किलोग्राम वर्ग के ब्रॉन्ज मेडल मैच में दबदबे वाला प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में अमरीका की कैली मैनुअल से 5-7 की करीबी हार के बाद पूर्व अंडर 15 एशियन चैंपियन ने खुद को संभाला और वापसी की। उन्होंने स्पेन की पाउला बेनाइक्सा पेरेस के खिलाफ टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से शानदार जीत हासिल कर कांस्य पदक जीता। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक अजरबैजान के बाकू में स्थित नेशनल जिम्नास्टिक एरिना में किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत ग्रीको रोमन कुश्ती से हुई, जिसके बाद महिला रेसलिंग का आयोजन हो रहा है। चैंपियनशिप का समापन फ्रीस्टाइल रेसलिंग के साथ किया जाएगा। और अब सीधे चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशाल। विशाल, उन्नति हुड्डा और देविका सिहा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले की खास बात ये थी कि कोई ना कोई भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में प्रवेश करता, तो आज किस खिलाड़ी ने बाजी मारी है विशाल?
3: प्रशांत, दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए इस मुकाबले का पहला गेम बेहद रोमांचक रहा, जहां उन्नति ने धैर्य के साथ 23-21 जीत दर्ज की। उन्नति ने शानदार शुरुआत की और 11-13 की बढ़त बना ली, लेकिन देविका ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 21-21 से बराबर कर दिया। उन्नति ने निर्णायक क्षणों में संयम बनाए रखा और लगातार 2 अंक जीतकर पहला गेम 23-21 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद उन्नति ने दूसरा गेम भी 21-16 से जीतकर मुकाबला जीत लिया। अब सेमीफाइनल में उन्नति का सामना वियतनाम की ग्विन थुई लिन से होगा।
1: और विशाल, तन्वी शर्मा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है आज, कैसा रहा उनका मुकाबला?
3: जी प्रशांत, मुकाबला बहुत शानदार रहा और तन्वी ने बेहतरीन प्रदर्शन से थाईलैंड की सुपनिडा काटेथों को 21-15, 18, 21-21, 14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले गेम में तन्वी ने धीरज और एकाग्रता भरा खेल दिखाया और गेम 21-15 से अपने नाम किया। दूसरा गेम काफी रोमांचक रहा। तन्वी ने अंत तक मुकाबला किया, लेकिन महज 3 अंक से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगले ही गेम में जबरदस्त वापसी करते हुए तन्वी ने 21-14 से एक तरफा जीत दर्ज की। अब तन्वी का मुकाबला हुआंग यू हुसुन से होगा। प्रशांत, आपको ये भी बता दें कि पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज जापान के युडाई ओकिमोतो से 21-12, 21-10 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। जी प्रशांत,
1: बहुत बहुत जानकारी विशाल, विस्तृत जानकारी हमें देने के लिए बैडमिंटन पर। अब बात स्क्वाश पर भी कर लेते हैं। विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को अमेरिका के खिलाफ 0-2 से हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
4: स्क्वाश चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले में गुरवीर सिंह को ब्रेंटन टेगलियारिनी ने 7-11, 12-10, 9-11, 7-11 से हराया, जबकि शीर्ष खिलाड़ी आर्यवीर दीवान को यासीन शलाबी ने 5-11, 7-11, 5-11 से हराकर भारतीय टीम के सफर को टूर्नामेंट में समाप्त कर दिया। हालांकि ये पहली बार है जब किसी भारतीय टीम ने वर्ल्ड जूनियर

0: टीम प्रतियोगिता में लगातार पदक जीते हैं। तेगली यारिनी ने गुरवीर के खिलाफ 2-1 से पिछड़ने के बाद वापसी की और अमरीका को शुरुआती बढ़त दिलाई। उन्होंने 11-7, 9-11, 6-11, 11-7, 11-3 से जीत हासिल की। इसके बाद शलाबी ने दूसरे मैच में तेज शुरुआत की और आर्यवीर पर 3-0 से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह पक्की की। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन ने आज एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा कर दी। स्वप्ना ने लगातार चोटिल होने के कारण संन्यास की घोषणा की। स्वप्ना बर्मन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एथलेटिक्स सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ये मेरी पहचान, मेरा जुनून, मेरा सपना और अनगिनत त्याग, संघर्ष, आंसुओं और कभी न भूलने वाली यादों से भरा एक सफर रहा है। स्वप्ना बर्मन पहली बार 2017 में भारतीय एथलेटिक्स की दुनिया में उभर कर सामने आई। उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने जकार्ता में 2018 में आयोजित एशियन गेम्स

0: मेरा जुनून, मेरा सपना और अनगिनत त्याग, संघर्ष, आंसुओं और कभी न भूलने वाली यादों से भरा एक सफर रहा है। स्वप्ना बर्मन पहली बार 2017 में भारतीय एथलेटिक्स की दुनिया में उभर कर सामने आई। उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने जकार्ता में 2018 में आयोजित एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। जबड़े की चोट के बावजूद स्वप्ना ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। चोटों से लगातार प्रभावित रहने के बावजूद उन्होंने 2019 और 2023 एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने 2023 एशियन इंडोर चैंपियनशिप में भी रजत पदक अपने नाम किया। 29 साल की स्वप्ना बर्मन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब बात क्रिकेट पर। एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रमुख त्वेंगवा मुकुलानी ने आज कहा कि विश्व कप का सह मेजबान होना हमारे लिए बड़ा सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि यह अवसर वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजित करने की हमारी क्षमता पर भरोसे का प्रतीक है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और sportscan की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। के समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
3: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
2: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
3: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी।

0: गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने 2 महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन

0: सैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है।

0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज है, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain.
2: Exploration ke liye aur uske baad mein production ke liye बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीज्मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर

0: Jasmine Namboria, Arundhati Chaudhary and Jadumani Singh advanced to the title bouts in their respective categories, assuring the country of at least 5 silver medals. Preeti entered the final with a unanimous 5-0 victory over Zambia's Catherine Mwape in women's 54kg final. Ankush Pangal entered the men's 80kg final, defeating Canada's Joshua Ofori by a unanimous 5-0 decision in the semi-final. Jasmine Namboria produced a dominant performance to storm into the women's 57kg final as she defeated Lesotho's Riplink Masisila via referee stop contest in the semi-final. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former AAP Councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Namboria, Arundhati Chaudhary, Jadumani Singh and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो जाते जाते हम आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर की 3 बजे सुनेंगे अलग अलग प्रांतों की गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम राग रंग आप सुनेगा कल शाम के 4:30 पर। कल शाम के 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। कार्यक्रम साज और आवाज आप सुन पाएंगे कल रात के 7:30 पर। कल रात के 8 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्म गीत। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनिए न्यूज एट 9। श्रोताओं कल हम फिर हाजिर होंगे दोपहर के ठीक 2 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री लाम सिंह, श्री हेमंता स्वर्गरे और मिस शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री